0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: ये गाना सारे मर्दों के लिए, जो जो परेशान है उनके लिए सुनो.